0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड to bring back the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आप मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आयुष्मान की पाठशाला में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के मौके पर।
1: आयुष्मान, मैं भी आपके पाठशाला का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अरसे हो गए स्कूल गए मुझे, कैन आई जॉइन योर पाठशाला?
0: ऑफ कोर्स यू शुड।
1: अगर हम बच्चों की बात करें आयुष्मान, आपके पाठशाला की बात करें, मेरे को लगता है मेरा मन है मैथ सिखाने का। मैथ से शुरुआत करें क्योंकि बच्चों को आज हम हैंड हाइजीन डे के मौके पर थोड़ी सी मैथ सिखा दें। वर यू गुड इन मैथ्स?
0: आई वाज टेरिबल इन मैथ्स, मतलब गणित में बिल्कुल ही खत्म। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो मैथ्स से बहुत दूर तक रिश्ता नहीं होता उनका। बट आई एम श्योर आप लोगों को मैथ्स पसंद है।
1: पसंद है? क्लास मैथ से शुरू करें? सो आयुष्मान, आई एम जस्ट गोना टेक द किड्स थ्रू सम डेटा, सम स्टैटिस्टिक्स ऑन
0: ओके
1: हैंड हाइजीन। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे रेडी? सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, WHO क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है हम अच्छी तरह हाथ धोएं तो 50-70% हेल्थ केयर के इन्फेक्शंस कम किए जाते हैं। सो 50-70% कितने प्रतिशत कम होते हैं? 50-70%। सेकेंडली, यूनिसेफ कहता है कि इफ़ वी वॉश आर हैंड्स विद सोप, यानी कि अगर हम बच्चों हाथ साबुन से धोए, करीब 40% केसेस डायरिया के कम होते हैं। सो 40% रिडक्शन इन डायरियल केसेस। And coming to our campaign, Detol Banega Swasth India, when we talk about absenteeism, yaane ki jo bache school nahi jate, absent hote hain bimar padne ki wajah se, 39%, yaane ki 39% kam hote hain. So ye tha mera maths ka lesson. Ayushman, aapne dekha ki haath dhona kitna zaruri hai aur kitna farak lata hai, infection se ladta hai, bache school ja pate hain, and most importantly, no absenteeism.
0: तो देखा आपने हाउ हैंड वॉशिंग हेल्प्स टू रिड्यूस इलनेस एंड इन्फेक्शन, यानी कि आप स्कूल जा सकते हैं रोज, सो नो एब्सेंटिज्म। स्कूल जाने का मन करता है रोज? झूठ बोल रहे हैं।
1: हमें तो मजा नहीं आता था। आयुष्मान,

0: इज माय मैथ्स लेसन, अब आप बच्चों को थोड़ा मैथ सिखा दें।
1: मुझे, मैं मैथ सिखाऊंगा? देखो पहला सवाल, कोशिश करता हूँ, इस लेवल की मैथ्स तो मुझे आती है, वैसे मैं इनके साथ ही बैठ जाता हूँ। हाँ, तो पहला सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ 20 सेकंड्स हाथ धो लें तो क्या होता है? कौन आंसर देगा? आप सब बैठो, अभी बताओ।
2: बीमार नहीं पड़ेंगे।
1: वाह अंबिका, आपका ये डेटा जो है ना काम आ गया, बोल रही बीमार नहीं पड़ेंगे।
0: वेरी गुड। आपका नाम? चार्वी। वेरी गुड
1: चार्वी, बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं सही तरीके से सिर्फ अगर 20 सेकंड हाथ धो लिए तो आप बहुत बीमारियों को रोक सकते हैं, करेक्ट?
0: यस।
1: तो बताओ बच्चों, दिन में कितनी बार हाथ धोने चाहिए और कब कब? कौन बताएगा? आप बताओ।
2: खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग।
0: वेरी गुड,
1: वेरी गुड।
0: और कोई बच्चा अगर ट्राई करना
1: चाहे? स्फूर्ति के लिए तालियां।
0: स्फूर्ति के लिए तालियां।
1: तो सीधी सी गिनती हुई, ज्यादा धोना इक्वल्स टू कम बीमारी, ठीक है? ये मानते हैं आप लोग? आप सच में हाथ धोते हैं क्या, कहने के लिए बोल रहे हैं? ये मम्मी ने सिखाया था कि स्कूल में सिखाया था? मम्मी ने नहीं सिखाया? बोथ। बोथ, गुड।
0: बोथ ने सिखाया, घर पे भी आने की, स्कूल पर भी।
1: तो ये सिर्फ क्लास नहीं है, इट्स अ हैबिट। व्हेन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज चेंज दैट हैबिट, ओनली देन विल आवर कंट्री बिकम स्ट्रांग। तो पूरा देश बनेगा स्वस्थ।
0: एब्सोल्युटली आयुष्मान, लेकिन इस पाठशाला में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर तेजस देवेंद्र गोहिल को, जो चीफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इन्फेक्शन कंट्रोल एडवाइजर भी है लीलावती हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से।
1: तो बच्चों, आपको मम्मी ने समझाया, स्कूल में समझाया, अंबिका और आयुष्मान ने समझाया, अब डॉक्टर समझाएंगे आपको। डॉक्टर का समझाना भी जरूरी है ना? तो वी हैव कॉल्ड डॉक्टर गोहिल फ्रॉम लीलावती हॉस्पिटल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और आपको ये बताएंगे कि जर्म्स कैसे फैलते हैं और उसका क्या क्या, आपको हाइजीन कैसे रखना है, ठीक है? आर यू रेडी? प्लीज वेलकम डॉक्टर गोहिल फ्रॉम लीलावती हॉस्पिटल।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर गोहिल, आप आयुष्मान की पाठशाला में आए।
3: थैंक यू, थैंक यू। सो बच्चों, आपको जर्म्स मतलब क्या होता है पता है क्या? वॉट आर जर्म्स? जर्म्स मतलब कीटाणु होते हैं। अगर ये कीटाणु हमारे शरीर में, बॉडी में अगर चले जाते हैं तो हमको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन यानि हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लाइक खांसी, सर्दी, ये हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जिसको हम दस्त भी बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन होते हैं। ये इन्फेक्शन कैसा फैलता है? तो जर्म्स ये हमारे हाथों से ही फैलते हैं। तो हमारा हाथ ये स्वच्छ होना चाहिए, हमेशा क्लीन होना चाहिए। हम एक एक्टिविटी से हम लोग ये भी जानेंगे कि ये फैलता कैसे है जर्म्स, एक स्टूडेंट से या एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथों में जर्म्स कैसा फैलता है, ये हम एक्टिविटी से देखेंगे।
0: लेकिन एक्टिविटी के पहले,
1: हाँ, एक क्वेश्चन है आपके लिए डॉक्टर
0: साहब। मेरे पास भी बहुत सवाल है।
1: एक क्वेश्चन ये है कि जर्म्स आर लाइक टाइनी मॉन्स्टर्स, कभी कभी आपके हाथ बिल्कुल स्पार्कली क्लीन होते हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है जर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं?
3: हाँ, तो जर्म्स ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको हमारे नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसीलिए हमको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, उसीलिए वो एक्सरसाइज हमको करना है कि ये जर्म्स हमको दिखते नहीं हैं, बावजूद भी हमारे हाथ में होते हैं और कैसे फैलते हैं।
0: बच्चे, आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटी?
2: यस।
0: तो अब आप डॉक्टर गोयल हमें समझाइए, बच्चों को समझाइए, ये ग्लिटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जर्म्स के जैसे, ओवर टू यू। ये एक्टिविटी कैसे बनेगा?
3: ये हमारा एक ग्लिटर एक्टिविटी होगा। तो ये ग्लिटर हम लोग, ये ग्लिटर है, इट विल एक्ट एज अ जर्म, ये कीटाणु एक्ट करेगा, ठीक है? ये हम कुछ बच्चों के हाथ में लगाएंगे, फिर जिस बच्चों के हाथ में हमने नहीं लगाया है, दे विल गो एंड शेक हैंड टू द अदर चिल्ड्रन, एंड हम देखेंगे कि वो उसके हाथ में, जिसके हाथ में हमने ग्लिटर नहीं लगाया, उसमें कैसा ट्रांसमिट होता है। तो जर्म ट्रांसमिट इन दिस मैनर, वाइल शेकिंग हैंड्स, वाइल हगिंग एंड ऑल।
0: दिखाओ जिन जिन के ग्लिटर, तो ये कीटाणु है, जो जिन हाथों पे हम ग्लिटर देख रहे हैं वो एक्चुअली कीटाणु का
3: एक्चुअली कीटाणु है। या यस, अभी अभी आपने, आपके हाथ में कीटाणु नहीं है, अभी आप इनसे हैंडशेक कीजिए। अभी आपका हाथ देखिए, अभी आपके हाथ में कितने कीटाणु आ गए। हाँ, तो कीटाणु इस तरह से ही फैलते हैं।
0: अब आप उनके हाथ में दीजिए, इसे ट्रांसफर करिए,
1: अब इनको हाथ मिलाइए।
3: आप इस कुर्सी को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो इस पे ये भी, देखो इस पे भी कीटाणु आ जाएगा।
1: लाल कलर के कीटाणु आए आपके।
0: आप बच्चे इस, मेरे हाथ में कुछ कीटाणु दिख रहे हैं?
2: नहीं।
0: आयुष्मान सर के
1: है।
0: एक में है,
1: एक में है, एक में नहीं है।
0: और डॉक्टर सर के
1: एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं
0: है। फन एक्टिविटी करते हैं, आपके पास टॉर्चेस है, आर वी रेडी फॉर इट? आप कीटाणु देखना चाहते हो?
4: यस,
0: कीटाणु देखना चाहते हैं।
1: हम भी देखना चाहते हैं।
0: लाइट्स ऑफ एंड लेट्स गेट द टॉर्चेस। चलो बच्चे टॉर्च निकालो।
1: बच्चों अब देखते हैं कैसे जर्म स्प्रेड होते हैं।
0: सो मेरे हाथ तो साफ है आयुष्मान।
1: आपके तो
0: गोहिल
1: आपके भी
0: देखो, आपको कीटाणु
1: फुल ऑफ कीटाणु
0: दिख रहे
3: नहीं दिख रहे

0: बच्चों आपने बोला कि 20 सेकंड हाथ धोने चाहिए, चलिए आयुष्मान सर को उन्हीं के पाठशाला में आइए दिखाते कि हाथ जो वो 20 सेकंड की टेक्निक है किस तरह हाथ धोना चाहिए।
1: So, let's go to the washroom.
0: Who's going to lead? आइए बच्चों। हाथों के बीच, उंगलियों के बीच, नाखून।
2: So, इसका एक नहीं का निमोनिक है।
1: क्या निमोनिक है सर बताइए?
2: सुमन
1: सुमन
2: सुमन।
1: तो क्या क्या है? सबसे पहले
2: सीधा
1: सीधा।
0: चलो बच्चों
1: उधर मुंह करो
0: कैमरे पे ताकि हमारे व्यूअर्स
1: सीधा। फिर उल्टा
2: उल्टा। फिर मुट्ठी
1: फिर मुट्ठी।
2: फिर अंगूठा
1: अंगूठा।
2: फिर नाखून
1: फिर नाखून। दैट इज सुमन
2: दैट इज सुमन
0: S-U-M-N।
1: ग्रेट सर।
0: Well, बच्चों मजा आया। अब आप सब भी अपने हाथ धो सकते हैं। पर आयुष्मान सर पास हुए क्या? उन्होंने सीख लिया है? पास की फेल? पास। Well done।
1: यार ज़्यादा पीयर प्रेशर मत हो, फेल भी कर सकते हो मुझे। मुझे इतनी ईगो नहीं है मेरे अंदर। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।
0: हाथ धोना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग ने एक एक्टिविटी की है, हाथ धोना बहुत जरूरी है, प्लीज वॉश योर हैंड्स।
1: थैंक यू डॉक्टर गोहिल एंड थैंक यू अंबिका। अभी हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी ही पाठशाला में, अब और कुछ सीखने का मौका है। एंड वी हैव अनदर गेस्ट कमिंग अप, रवि भटनागर आने वाले हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.

0: वेलकम बैक टू एनडीटीवी बनेगा स्वस्थ इंडिया और यह है आयुष्मान की पाठशाला। कहने को आयुष्मान की पाठशाला है लेकिन आयुष्मान ने खुद यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है इन अमेजिंग बच्चों से, डॉक्टर गोहिल से। आगे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्या होने वाला है आगे?
1: बहुत मजेदार चीजें होने वाली। इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर पाठशाला। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है लेकिन आयुष्मान जो बच्चे सीख रहे हैं, जो ये हाइजीन करिकुलम के बारे जो बच्चे एक्चुअली ऑन ग्राउंड सीख रहे हैं, उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी रैकेट से रवि भटनागर को, जो कम्युनिकेशंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर साउथ एशिया, मेनार और अफ्रीका से हैं। वो सालों से ही इज बिन रियली वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन्स एंड वी कुड सी कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। साथ ही टू सी द रियल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर किरण दिनकर पाटिल को, जो हेडमास्टर है प्रभा देवी प्राइमरी मराठी स्कूल के, जो मुंबई से ये स्कूल है। तो कैन वी प्लीज हैव मिस्टर रवि भटनागर एंड मिस्टर पाटिल ऑन स्टेज। सो द मैन बिहाइंड अ लॉट व्हिच हैज हैपेंड ऑन आवर कैंपेन, मिस्टर भटनागर एंड मिस्टर पाटिल जो प्रिंसिपल है, आइए सर।
0: तो रवि जी, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड क्या हुआ है और करिकुलम क्या चेंज लेकर आया है? आप बहुत पैशनेट हैं इसको लेकर, अब काफ़ी साल हो गए हैं हमें बात करते हुए, बट जितनी बार आपसे बात करता हूँ कुछ सीखने को मिलता है, क्या हुआ है ऑन ग्राउंड?
2: सो सबसे बड़ी बात है आयुष्मान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रॉम गौरव जैन, हु इज़ आर EVP फॉर साउथ एशिया एंड फॉर दिस वंडरफुल पार्टनरशिप ऑफ वर्किंग टुगेदर। लास्ट ईयर के अगर मैं आंकड़े देखता हूँ तो 40 बिलियन हैंड वॉशिंग हम ट्रिगर कर पाए हैं अक्रॉस इंडिया। मैं नहीं बोलता कि ये इनफ है, और ज़्यादा की ज़रूरत है। वो लास्ट साल था, ये नया साल है। लास्ट साल हम लोग अराउंड 30 मिलियन स्कूल किड्स तक हमने रीच किया था थ्रू आर प्रोग्राम। अभी की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट अराउंड 35 मिलियन स्कूल किड्स। From 1 million schools, we have reached to 1.20 schools now. So 0.20 million has been increased there. There has been a lot of new stuff which is happening, which is super engaging. There is a lot what we are going to see from the Lego artist. We are going to see the games, what we have been playing, the accessibility curriculum, the ambitions to make sure no one is left behind. We have a lot of kids which we have been interacting with, and what has changed for us fundamentally is more deeper engagement, more playways, methods of education, especially on hygiene. And one major shift is a very beautiful marriage between few kids. As you may have also noticed, there was a green dot on the screen.
0: Yes.
2: So when our conversation started between you, me, NDTV, and with our stakeholders, they said like, you know, none of the dot is complete in itself. We need to have a deeper rooted perspective. And we thought like, this is the first time with Ayushman, we will get on something which is very fresh. It's a marriage between the red dot, green dot, violet dot, and blue dot. So each dot represents something. And just from hand washing to talking about menstrual hygiene management, which is by the red dot, actually represents that. The blue dot comes from our work around sanitation. And then you have the violet dot, which is for overall health. So how each dot is actually overlapping with each other. And one is incomplete without another.
1: So true, and I think Ayushman Ravi ji ne itni achhi tarah ise dala about the integration of the four dots.
0: Aur abhi principal sir, pata hai kya, hamare time pe na principal se dar lagta tha. Ab main bahut khush hu ki aajkal ke jo teachers aur principal hai, bacche unse bahut aur baat kar sakte hain, khul ke baat kar sakte hain. Main aapse ye puchna chahta hu ki aapke jab bhi introduce hua tha, hygiene introduce hui thi, to isse attendance mein kya tabdili aayi hai, kya badi hai attendance, unme kya impact hua hai bachcho mein?
3: जब ये हमारे स्कूल में चालू किया तो बच्चों का बीमारी का प्रमाण कम हो गया और बच्चे का अटेंडेंस बढ़ गया और बच्चे भी ये सब चीज़ें है उसका यूज़ करने लगे हैं और हाइजीन का उपयोग बच्चे कर रहे हैं और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ भी अभी इसके साथ बढ़ रही है और बीमारी का प्रमाण कम हो गया है और स्कूल का भी उस जब एरिया में जितने स्कूल बच्चे हैं, जितने पेरेंट्स हैं, वो स्कूल के हाइजीन के वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं और अच्छी तरह ये सब बच्चे छुट्टी में जब खाना खाने जाते हैं तब हैंड वॉश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं तब हैंड वॉश करते हैं। और मैं रवि भटनागर जी को थैंक्स बोलूँगा कि हमारे स्कूल में उन्होंने ये सब प्रोवाइड किया है और बच्चे ज़्यादातर उसका यूज़ कर रहे हैं और अपने घर में भी यूज़ करने के लिए पेरेंट्स को बोल रहे हैं।
1: वेल थैंक यू सो मच पाटिल जी, आप आए और अपनी बच्चों की जर्नी हमारे साथ शेयर की। रवि आयुष्मान, आइए अब देखते हैं और कुछ करते हैं कुछ मज़ेदार। चलते हैं ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स की तरफ कि किस तरह बच्चे प्ले वे तरीके से, यू नो द राइट वे, हमें किताबों के जरिए से पढ़ाया जाता था। लेकिन रवि आयुष्मान, आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं मृणाल शाह जो फाउंडर है संडे ब्रिक्स के, बच्चों के साथ ही वेरी बिजी। बच्चे बहुत बिजी लग रहे हैं, बच्चे मजा आ रहा है?
0: Yes! हमें आपको मजे करते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है,
1: हमें अपने दिल याद आ रहे हैं ब्लॉक्स के साथ।
0: मेरे तो अभी भी दिन वही है,
1: मैं ब्लॉक्स बनाती हूँ तब तक हम।
0: हाँ मृणाल, आपसे पूछना चाहता हूँ प्ले बेस्ड लर्निंग कैसे वर्क करती है, कितनी क्रिटिकल है स्पेशली हैंड वॉशिंग को लेकर, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं हाइजीन बढ़े इंडिया में और हैंड वॉशिंग कैसे प्रमोट की जाए। अब ये खेल के जरिए कैसे प्रमोट हो रही है, हाउ इफेक्टिव इज इट?
4: तो फर्स्टली प्ले इज द बेस्ट वे द माइंड कैन लर्न थिंग्स, राइट? तो हम सारी चीज़ों को वे मेकिंग इट टैक्टाइल हैंड्स ऑन, विच मीन्स वेन यू टच थिंग, वेन यू फील थिंग, यू जस्ट रिमेंबर इट बेटर। सो हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन। एंड टिपिकल स्कूल में ये होता है कि यू आर डूइंग पैसिव लर्निंग, आपको टीचर बताती है एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, बट दिस इज एक्टिव लर्निंग वेयर आई एम टेलिंग देम समथिंग, दे आर रिक्रिएटिंग समथिंग। सो मैंने जो उनको सिखाया है, व्हेन दे रिक्रिएट थिंग्स दैट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बीन टेलिंग देम, हाउ डू दे अंडरस्टैंड दैट। सो द वर्ल्ड वी गेट टू नो थ्रू प्ले, हाउ डू दे सी द वर्ल्ड, सो दैट्स हैपनिंग हियर।
0: जब तक आप उनके साथ बच्चे बनकर खेलते नहीं हैं तब तक वो मैसेजिंग जाती नहीं है।
1: So rather than being a dictator, when you're with them doing something, I think the impact. Ravi, what do you feel on that?
2: So the biggest difference here, Ambika, is basically, you know, it's an active learning. And, you know, various senses of the kids are getting involved and they are getting engaged. Where there's a mental growth, there is a cognitive growth of the kids, there's a neuro growth of the kids through this whole approach. And the whole approach is basically called the neuro-linguistic programming.
4: So a lot of things that we learn are abstract, but when we touch and feel, it becomes concrete. So we talk about germs, you know, we've told them about germs, but nobody knows how do they look like. But here I've got kids. Everybody want to show the germs that you all
0: germs dikhao bachcho.
4: Yeah. And yes. Look, this is how I perceive the germ to be, or this is how he or she perceives the germs to be.
1: Wow. So for everybody's perception of a germ is different.
0: Har ek germ ki alag personality hai.
4: Exactly.
1: Ye wali to zyada hi thodi si.
0: यार क्या जर्म है,
1: व्हाट अ कूल जर्म, एंड शी शोइंग मी अनदर वन।
0: यार इतना गुड लुकिंग मत बनाओ जर्म की जर्म से प्यार हो जाए।
1: आई थिंक हम सबको बच्चों के लिए क्रिएटिविटी, ये कीटाणु बनाने के लिए ताली तो बजनी चाहिए। कम ऑन चिल्ड्रन क्लैप फॉर
3: गुड जर्म।
1: वेल ओहो, एक कीटाणु को मैंने, बट चलो बहुत मजे कर लिए, घंटी बजने वाली है। सो वी हैड लॉट्स ऑफ फन,
0: मजा आया बच्चों, मजा आया।
1: सो आयुष्मान की पाठशाला हिट फ्लॉप? जाते जाते फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलो अब हम हॉपस्कॉच खेलेंगे। सो रवि कम ऑन, लेट्स स्टार्ट, दे वी विल स्टार्ट विद रवि सर।
0: रवि सर आप करो।
2: सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आफ्टर दैट यूजिंग द टॉयलेट, यूजिंग ए जर्म स्पेसिफिक थिंग, एयर ड्राइंग द हैट, देन हियर, देन वी स्पिन, then we dodge the jumps.
1: So dodging में आपको बच्चों jump करना पड़ेगा।
2: ऐसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे। Kids are very smart, so they will be winning.
1: This is the best.
0: Yeah.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.

0: women's safety or to curb drug trafficking. So these will be the very important decision from TVK chief Vijay, who also sworn in as the chief minister today. So we will continue to follow how this government going to function, and there are many challenges also before them. We'll get to know more details very shortly.
1: Thank you, Vijay, for putting all of that into perspective. And this is a new beginning. That was the message from the newly sworn-in Tamil Nadu Chief Minister, C. Joseph Vijay, in his first address. All right, cutting across right now to Pranav Adani. He's addressing a gathering.
2: Guna ki is pavan dharti par Adani Cement ke bhumi pujan ke avsar par aap sabhi ke beech maujood hona mere liye bahut garv ki baat hai. आज का दिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला दिन है. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लीडरशिप में मध्य प्रदेश को विकास की नई रफ्तार मिली है. सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट पर है. साल 2025 में राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होना इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति विजन के तहत यहां लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में जो सुधार हुआ है, इससे इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बहुत मजबूत हो चुका है. मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं. आपके सहयोग और प्रयास से हमें काफी मदद मिली है. इससे डेवलपमेंट प्लान्स सिर्फ कागज पर ही नहीं, जमी पर भी जल्दी उतरे हैं. हाल ही में आपने शिवपुरी जिले में अदानी विकास केंद्र का इनॉग्रेशन किया था, जिससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिला है. साथियों, आज अदानी ग्रुप एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे देश के कई जरूरी क्षेत्रों में काम कर रहा है. हमारा लक्ष्य केवल कारोबार बढ़ाना ही नहीं, बल्कि भारत के विकास में योगदान करना और भारत के लोगों को असली बदलाव मिलना चाहिए. पिछले साल भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हमारे चेयरमैन श्री गौतम भाई अदानी जी ने मध्य प्रदेश के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का संकल्प किया था. ये इन्वेस्टमेंट पंप, हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स और थर्मल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में किया जाने वाला था. इससे साल 2030 तक 1,20,000 लोगों के लिए नौकरी मिलेगी और उनको ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आज का ये भूमि पूजन उसी किए गए वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक मजबूत कदम है. हमारा फोकस गुना डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नौकरी के लिए नए अवसर देने और सम्मानजनक जीवन देने पर है. मध्य प्रदेश हमारे लिए पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है. कटनी डिस्ट्रिक्ट, अमेठा और कैमूर प्लांट में हमने 4,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं. मध्य प्रदेश को अदानी पावर 1200 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है. इसके अलावा 5,600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हम जेनरेट करने वाले हैं, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है. मध्य प्रदेश में पावर की बढ़ती डिमांड का हम ध्यान रखने वाले हैं. हमने लाहौरी, धर, रतलाम और उज्जैन में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट भी शुरू किया है.

0: है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उज्जैन में भी हम सीमेंट प्लांट का बहुत जल्दी ही भूमि पूजन चालू करने वाले हैं। आज हम गुना में अदानी सीमेंट के नए प्लांट का भूमि पूजन के लिए आए हुए हैं। आज अदानी सीमेंट का 109 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है और हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि प्रोडक्शन और सप्लाई का नेटवर्क ऐसा हो जिससे लोगों तक हमारा सीमेंट जल्दी पहुंचे, कॉस्ट कम और क्वालिटी सबसे अच्छा पहुंचे। ये प्रोजेक्ट जो हम यहाँ कर रहे हैं, सालाना 40 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ दो फेज में होने वाला है। पहला फेज अभी जो तैयार होगा 2028 तक शुरू कर लेंगे। हम इसी स्पीड, क्वालिटी और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट में, जैसे आपने सुना, 1060 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये गुना में आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे लगभग 1500 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट स्टेट ट्रेजरी को 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा योगदान देगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट की असली ताकत सिर्फ नंबर्स में नहीं होती है। असली ताकत होती है बदलाव की, जो लोगों की जिंदगी में आता है। इस प्लांट से आसपास नए स्मॉल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज और लोकल सप्लाई की नई संभावनाएं पैदा होगी। साथियों, ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है, ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है और ये राज्य की प्रगति में पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्र मंत्री जी, मैं आपका और आपके सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपकी कोशिशों से इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव माहौल आपने बनाया और फैसलों में तेजी आई है। अदानी ग्रुप मध्य प्रदेश के ये सुनहरे भविष्य के साथ पूरी मजबूती के साथ हम साथ में खड़े रहेंगे। हम राज्य के विकास में पार्टनर बनेंगे और ये ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश लेकिन भारत के निर्माण में हमारा जो हो सके हम पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
1: The address of Pranav Adani, and he's in Guna, Madhya Pradesh. Of course, Guna, the bastion of Sindhias, and more importantly, Madhya Pradesh as a state has been putting a lot of pressure, putting a lot of focus to ensure that there's infrastructure development. There are new industries that come in the state. Chief Minister has been specifically very keen for new companies to come and invest in the state, and this will be just the right kind of push that the state might need in terms of job creation to ensure that the locals of the state don't have to travel outside to get jobs. Madhya Pradesh touted as a state with the right kind of support system, with availability of land. We also have the Minister Jyotiraditya Sindhia addressing. Let's listen in. All right, shifting our focus back to the state of Tamil Nadu. Well, it has seen not just a new chief minister, but also a freshly sworn in cabinet. Now, 9 leaders have sworn in as ministers of Tamil Nadu cabinet, which includes veteran leader K.A. Sengotian, who joined the TVK after being expelled from AIADMK. The others who took oath alongside Vijay were Adavarjuna, considered one of Vijay's trusted strategists, CTR Nirmal Kumar, a former BJP functionary who won in Madurai, and also Busi Anand, the TVK's general secretary, among others. Interestingly, the list also features 29-year-old S. Kirtana, the youngest face in the cabinet, and an MLA from Sivakasi.
2: It's a people victory, particularly Tamil Nadu women and youth victory. Definitely our leader and our all ministers will give transparency government. We'll work for the all minority brothers and sisters. We'll work for the development, particularly social justice and secularism. Definitely we will change. We'll start a new history. What is the experience? All the experiences, the DMKs, the corruptions. We'll give the, you can see the transparency and the development ministry. Thank you.
3: Victory, victory, victory, and everything gonna change. And the change is here. The Talapathy Chief Minister Joseph Vijay is here. And so, coming from such a middle class family, getting such an opportunity as a candidate, and being and having a cabinet minister, is it easy in any of the state? No. It just purely, he sees the skill, he sees the talent, and we are here to make all the changes. Of course, more than 15 years, 20 years, 35 years, 50 years, we are going to be a longest government.
4: And definitely our leader said we'll publish a white paper.
5: Thank
4: white paper on the department. Definitely
5: past we all governance, will. White paper and
4: yes, yes, yes, yes. We'll publish. We'll do a complete audit and we'll publish a white paper on the current situation. What is there in the department? What is there? What is not there? And what need to be prioritized and what need to be focused? So all those things will be given.
6: It's a really very happy and proud moment. The people of Tamil Nadu have given the solid mandate to Tamil Nadu Vetri Kalaham. They have given their hopes on this, our party and our leader. Definitely, we feel very responsible. And as our leader said today, step by step, we will fulfill all the promises we have delivered.
7: ட்ரான்ஸ்பரன்சி தான், பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தொடங்கி, பஞ்சாயத்தில் தொடங்கி, கார்பரேஷனில் தொடங்கி, ஒரு முனிசிபல் கவுன்சிலில் தொடங்கி, மாண்புமிகு அமைச்சர் வரைக்கும் அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சியை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். அப்புறம் நாம் பேசுறத விட மக்கள் பேசணும், அதை நம்ம கேட்கணும், அந்த கிரீவன்சஸுக்கு சரியான சொல்யூஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஒரு பெரிய ஒரு இலக்கோட நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம். நல்ல ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ஒரு பிளானோடு வந்திருக்கிறோம். ஒரு தானை தலைவன் தர்மத்தாயின் தவ புதல்வன் எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையில் சிறப்பான ஆசிரியர்.
8: Being proud to be a citizen of Tamil Nadu and giving a part of a ministerial job in Tamil Nadu under the supervision of our CM will do all kind of good things.
1: Meanwhile, speaking at an event in Bengaluru, the Prime Minister hit out at Congress over its alliance with TVK. The Prime Minister called the Congress party a parasite for breaking its alliance with the DMK, a party it had allied with for more than 20 years. Listen in.
9: अभी तमिलनाडु में ही देखिए 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था. डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी. लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया.
1: Shifting our focus now, this is about the UP cabinet expansion. 6 BJP leaders take oath as minister. Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held in Jan Bhavan in Lucknow. Cutting across to my colleague Ajay Dubey to get more details. Ajay, tell us more about this cabinet expansion.
5: See, this is the second expansion of Yogi 2.0, and today the important characters were state president, the ex-state president and the ex-minister in Yogi government, Bhupen Chaudhary. He was earlier the state president of BJP in Uttar Pradesh, and now he took oath. He was the first person to take oath today. And then Manoj Pandey. Manoj Pandey is MLA from Samajwadi Party. It's been 3 years when he did a cross-voting against Samajwadi Party, and with him other Samajwadi Party MLAs, they also voted for BJP at that time. And after 3 years, approximately 3 years today, he got a gift and he became a minister in the Yogi cabinet. Apart from him, the Krishna Paswan, who is from the she's from the Pasi community, and she also became a minister today. Sumain Tomar, he was a minister earlier and now elevated, and others from the different communities. The important part is that today there is a balance, geographical balance from the all important parts from Uttar Pradesh. New ministers are selected, and this expansion is more or less planned for the counter narrative of PDA. The way in parliament election 2024 we have seen BJP lost election in front of Samajwadi Party badly, so the reason was more or less PDA at that time also, and all this right. Time with this expansion they are giving priority to cutting the narrative of PDA.
1: Thank you Ajay for putting all of that into perspective. Well, with that, it's a wrap on this edition of NDTV 24/7. Thank you so much for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: Across the country.
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: इंडियाज अनशेकेबल न्यूज हैबिट, ndtv.com इज इंडियाज नंबर वन इंग्लिश न्यूज वेबसाइट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा

0: enthusiastic workers and some unruly incident happened in Kerala. People have given us landslide majority, and those unruly incidents are not our Congress culture. So we are requesting all the workers to stop this kind of activity.
1: It will take its own time. Then they will, the High Command will announce at the appropriate time. No barrier at all. Everything is solved. But it is up to the High Command. Now, why High Command will take the appropriate decision at the right time.
2: And referring to Kerala Chief Minister's suspense, Prime Minister Modi has taunted the Congress party, saying it is busy resolving internal rifts instead of focusing on governance. Listen.
3: यहाँ कर्नाटका में भी पिछले तीन साल से हम यही देख रहे हैं, जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहाँ की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे, ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो।
2: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: And after days of relentless back and forth, Talapathy Vijay has finally been sworn in as Tamil Nadu Chief Minister. Speaking at his oath-taking ceremony, Tamil Nadu CM announced three orders within minutes of swearing in. Post the swearing-in ceremony, the Chief Minister went to the Secretariat. He received the Guard of Honour, signed an order, sat on the Chief Minister's chair. Shortly after taking charge as a CM, Vijay also visited the Periyar Memorial, paying tribute to one of the TVK's ideologues. He also held a high-level law and order huddle, taking stock of the situation and meeting the chief secretary. The Tamil Nadu chief minister has hit out at the DMK in his first speech, raking up the issue of economic crisis in the state, saying DMK had emptied the state coffers.
2: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே சி வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க. இங்க ஒரே சென்டர் தான், என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, இப்பவே சொல்லிடுறேன். This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now.
0: Meanwhile, Vijay's father gets emotional, says, "My dream and my wish have been fulfilled by my son." Listen.
3: இவ்வளவு என்ன வேணுங்க எனக்கு? என்னுடைய ட்ரீம், என்னுடைய கனவு, அந்த கனவை அவர் நிறைவேற்றிருக்கிறாரு. என்னுடைய கனவை என் பிள்ள நிறைவேற்றிருக்கிறாரு. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கே அவர் முதல்வராக இருக்கிறாரு.
4: ஹாப்பி அன்னையர் தினம். விஜய் வந்து நன்றாக ரொம்ப நல்லா இதை எடுத்து நடத்துவாருன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பார்க்கலாம்.
5: Extremely happy from bottom of my heart, and just we really owe a lot of thanks to all the citizens of Tamil Nadu and everyone from the world, from all over the world.
0: NDTV's Sam Daniel also spoke to actor Trisha after Vijay took oath as Tamil Nadu Chief Minister. Listen in.
6: Is it a blockbuster of panic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of panic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of panic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
0: NDTV's managing editor Shivarur, who's reporting from Ground Zero, spoke to TVK fans on their first reaction on the new government formation. Vijay has the support of the young and the old coming out in large numbers. Have a look.
7: We've got a young little fan of Vijay here. You were inside?
8: Yes, sir.
7: How was it?
8: It was very nice, and it was goosebumps to see his speech more. And we got excitement of...
7: Your chief minister is sitting on the chief minister's chair now.
8: Yes, sir.
7: You want to congratulate him?
8: Yes, sir.

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: And after days of relentless back and forth, Talapathy Vijay has finally been sworn in as Tamil Nadu Chief Minister. Speaking at his oath-taking ceremony, Tamil Nadu CM announced three orders within minutes of swearing in.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है।
5: Welcome back. Madhya Pradesh Guna saw a massive industrial push with the Adani Group inaugurating its first major cement unit in Gwalior Chambal Belt. Chief Minister Mohan Yadav and Union Minister Jyotiraditya Sindhya led the charge as the Adani Group has pledged over 1,000 crore investment and over 1,000 employment opportunities. Here is more about this project.
6: Madhya Pradesh's Guna witnessed a major industrial milestone as Chief

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है

0: advice. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US, and of course the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected, and this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai, jisme videshi mudra bahut adhik kharch hoti hai. Ek zamana tha, jab sankat aata tha, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें. अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है. जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: And after days of relentless back and forth, Talapathy Vijay has finally been sworn in as Tamil Nadu Chief Minister. Speaking at his oath-taking ceremony, Tamil Nadu CM announced three orders within minutes of swearing in. Post the swearing-in ceremony, the Chief Minister went to the Secretariat. He received the Guard of Honour, signed an order, sat on the Chief Minister's chair. Shortly after taking charge as a CM, Vijay also visited the Periyar Memorial, paying tribute to one of the TVK's ideologues. He also held a high-level law and order huddle, taking stock of the situation and meeting the Chief Secretary. The Tamil Nadu Chief Minister has hit out at the DMK in his first speech, raking up the issue of economic crisis in the state, saying DMK had emptied the state coffers.
2: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களை, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே சி வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க. இங்க ஒரே சென்டர் தான், என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, இப்பவே சொல்லிடுறேன். This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now.
0: Meanwhile, Vijay's father gets emotional, says, "My dream and my wish have been fulfilled by my son." Listen.
3: இவரே என்ன வேணுங்க எனக்கு, என்னுடைய ட்ரீம், என்னுடைய கனவு அந்த கனவை அவர் நிறைவேற்றிருக்கிறார். என்னுடைய கனவை என் பிள்ளை நிறைவேற்றிருக்கிறார். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கே அவர் முதல்வராக இருக்கிறார்.
4: ஹாப்பி அன்னையர் தினம். விஜய் வந்து நன்றாக ரொம்ப நல்லா இதை எடுத்து நடத்துவாருன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பார்க்கலாம்.
5: Extremely happy from bottom of my heart, and we really owe a lot of thanks to all the citizens of Tamil Nadu and everyone from the world, from all over the world.
0: NDTV's Sam Daniel also spoke to actor Trisha after Vijay took oath as Tamil Nadu Chief Minister. Listen in.
6: Is it a blockbuster of panic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of panic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of panic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
0: NDTV's managing editor Shivarur, who's reporting from Ground Zero, spoke to TVK fans on their first reaction on the new government formation. Vijay has the support of the young and the old coming out in large numbers. Have a look.
7: We've got a young little fan of Vijay here. You were inside?
8: Yes, sir.
7: How was it?
8: It was very nice, and it was goosebumps to see speech more. And we got excitement of...
7: Your Chief Minister is sitting on the Chief Minister's chair now.
8: Yes, sir.
7: You want to congratulate him?
8: Yes, sir. Congrats, Talapathy Chief Minister Vijay. Thank.
9: Why do you like Talapathy so much?
7: He's sitting on the Chief Minister's chair as you speak. You can't see him right now on NDTV. Yeah. He's sitting on the Chief Minister's chair at the State Secretariat.
8: Yes, sir.
7: Finally, he's sitting to take his decisions. Why do you like him as Chief Minister?
8: Because he works hard for his politics and his acting. He works... too hard, and he got so many problems for his works and everything.
7: So what would you like to say to Vijay? He's listening to you right now on NDTV. What would you like to say to Chief Minister Vijay?
8: Sir, you are very brave and active too for us, and you, we hope that you will serve for us and Tamil Nadu. Thank you, sir.
7: You have.
9: How old are you?
8: I am very happy now. I am 11 years old.
7: Okay. Thank you very much. Thank you very much. One of the youngest supporters of Vijay there, congratulating Vijay as he sits in the Chief Minister's chair. It doesn't get more symbolic than that.
10: I am happy. Vijay Muthalamitsar sir, pengalukku paadhagaappu kudukkaran solliirukkaraaru. Romba sandosama irukku. Romba romba happy, happy, happy.
7: You have a woman saying she is extremely happy that one of Vijay's first announcements was the safety of women.
0: And Tamil Nadu sees not just a new chief minister, but also a freshly sworn-in cabinet. 9 leaders have been sworn in as ministers of Tamil Nadu cabinet, which includes veteran leader K.A. Sengotian, who joined TVK after being expelled from AIADMK. The others who took oath alongside Vijay were Adhavarjuna, considered one of Vijay's trusted strategists, CTR Nirmal Kumar, a former BJP functionary who won in Madurai. You also have Busiana, the TVK's general secretary, among others. Interestingly, the list also features 29-year-old S. Kirtana, the youngest face in the cabinet, and an MLA from Sivakasi.
11: It's a people victory, particularly Tamil Nadu women and youth victory. Definitely our leader and our all ministers will give transparency government. We'll work for the all minority brothers and sisters. We'll work for the development, particularly social justice and secularism. Definitely we will change. We'll start a new history. What is the experience? All the experience in the DMKs, the corruptions. We'll give the. You can see the transparency and the development.
12: Victory, victory, victory, and everything gonna change. And the change is here. The Talapathi Chief Minister Joseph Vijay is here. And so, coming from such a middle class family, getting such an opportunity as a candidate, and being and having a cabinet minister, is it easy in any of the state? No. It just purely he sees the skill, he sees the talent, and we are here to make all the changes.
13: This?
12: Of course, more than 15 years, 20 years, 35 years, 50 years.
13: Yes.
12: We are going to be a longest cabinet.
14: And definitely our leader said we'll publish a white paper. White paper on the department. Definitely
15: past
14: we all
15: governance.
14: Will.
15: White paper
14: yes. We'll publish. We'll do a complete audit and we'll publish a white paper on the current situation. What is there in the department? What is there? What is not there? What need to be prioritized and what need to be focused? So all those things will be done.
16: It's a really very happy and proud moment. The people of Tamil Nadu have given the solid mandate to Tamil Nadu Vetri Kalaham. They have given their hopes on this our party and our leader. Definitely, we feel very responsible. And as our leader said today, step by step, we'll fulfill all the promises we have delivered.
17: Transparency na political interference iruka kudadu police station la thodangi panchayat la thodangi corporation la thodangi or municipal council la thodangi manvamiga amateur varaikum and the transparency vandha nama vandu kondu varom appo nama pesuradoda makkal pesuna adha nama kekkanum and the grievances ku sariyana solutions provide pananum or periya or elakoda naanga thodangi irukrom nalla or homework panni or plan oda vandirukrom or thanai thalaivan dharmathaiyin thava pudalva engalude manvamiga tamil nadu mudalamaichar avarude thalaimaila serappana aasidharam.
18: Being proud to be a citizen of Tamil Nadu and giving a part of a ministerial job in Tamil Nadu under the supervision of our CM, will do all kind of good things.
0: Meanwhile, speaking at an event in Bengaluru, the Prime Minister hit out at the Congress Party over its alliance with the TVK. The Prime Minister called Congress Party a parasite for breaking its alliance with the DMK, a party it had allied for more than 20 years.
1: अभी तमिलनाडु में ही देखिए 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था. डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: And after days of relentless back and forth, Talapathy Vijay has finally been sworn in as Tamil Nadu Chief Minister. Speaking at his oath-taking ceremony, Tamil Nadu CM announced three orders within minutes of swearing in. Post the swearing-in ceremony, the Chief Minister went to the Secretariat. He received the Guard of Honour, signed an order, sat on the Chief Minister's chair. Shortly after taking charge as a CM, Vijay also visited the Periyar Memorial.

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: And after days of relentless back and forth, Talapathy Vijay has finally been sworn in as Tamil Nadu Chief Minister. Speaking at his oath-taking ceremony, Tamil Nadu CM announced three orders within minutes of swearing in. Post the swearing-in ceremony, the Chief Minister went to the Secretariat. He received the Guard of Honour, signed an order, sat on the Chief Minister's chair. Shortly after taking charge as a CM, Vijay also visited the Periyar Memorial, paying tribute to one of the TVK's ideologues. He also held a high-level law and order huddle, taking stock of the situation and meeting the chief secretary. The Tamil Nadu chief minister has hit out at the DMK in his first speech, raking up the issue of economic crisis in the state, saying DMK had emptied the state coffers.
2: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே சி வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க. இங்க ஒரே சென்டர் தான், என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்பவே சொல்லிடுறேன், This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now.
0: Meanwhile, Vijay's father gets emotional, says, "My dream and my wish have been fulfilled by my son." Listen.
3: இவரே என்ன வேணுங்க எனக்கு, என்னுடைய ட்ரீம், என்னுடைய கனவு அந்த கனவு அவர் நிறைவேற்றிருக்கிறார். என்னுடைய கனவை என் பிள்ளை நிறைவேற்றிருக்கிறார். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு முதல்வராக இருக்கிறார்.
4: ஹாப்பி அன்னையர் தினம். விஜய் வந்து நன்றாக ரொம்ப நல்லா இதை எடுத்து நடத்துவாருன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, பார்க்கலாம்.
5: Extremely happy from bottom of my heart, and we really owe a lot of thanks to all the citizens of Tamil Nadu and everyone from the world, from all over the world.
0: NDTV's Sam Daniel also spoke to actor Trisha after Vijay took oath as Tamil Nadu Chief Minister. Listen in.
6: Is it a blockbuster of
7: kind? Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of kind?
7: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of kind?
7: Very happy. Congratulations. Congratulations.
0: NDTV's managing editor Shivarur, who's reporting from Ground Zero, spoke to TVK fans on their first reaction on the new government formation. Vijay has the support of the young and the old coming out in large numbers. Have a look.
8: We've got a young little fan of Vijay here. You were inside?
9: Yes, sir.
8: How was it?
9: It was very nice, and it was goosebumps to see his speech more. And we got excitement of...
8: Your chief minister is sitting on the chief minister's chair now.
9: Yes, sir.
8: You want to congratulate him?
9: Yes, sir. Congrats, Talapathy, Chief Minister Vijay. Thank.
10: Why do you like Talapathy so much?
8: He's sitting on the chief minister's chair as you speak. You can't see him right now on NDTV. Yeah. He's sitting on the chief minister's chair at the state secretariat.
9: Yes, sir.
8: Finally, he's sitting to take his decisions. Why do you like him as chief minister?
9: Because he works hard for his politics and his acting. He works too hard and he got so many problems for his works and everything.
8: So what would you like to say to Vijay? He's listening to you right now on NDTV. What would you like to say to Chief Minister Vijay?
9: Sir, you are very brave and active too for us, and we hope that you will serve for us and Tamil Nadu. Thank you, sir.
8: You have...
10: How old are you?
9: I am very happy now. I am 11 years old.
8: Okay. Thank you very much. Thank you very much. One of the youngest supporters of Vijay there, congratulating Vijay as he sits in the chief minister's chair. It doesn't get more symbolic than that.
11: I am happy. Vijay Mudalamaichar sir, pengalukku paadhagaappu kodukkaran solliirukkaraaru. Romba sandosama irukku. Romba romba happy.
8: You have a woman saying she is extremely happy that one of Vijay's first announcements was the safety of women.
12: And Tamil Nadu sees not just a new chief minister, but also a freshly sworn-in cabinet. 9 leaders have been sworn in as ministers of Tamil Nadu cabinet, which includes veteran leader K.A. Singotian, who joined TVK after being expelled from AIADMK. The others who took oath alongside Vijay were Adhavarjuna, considered one of Vijay's trusted strategists, CTR Nirmal Kumar, a former BJP functionary who won in Madurai. You also have Busiana, the TVK's general secretary, among others. Interestingly, the list also features 29-year-old S. Kirtana, the youngest face in the cabinet, and an MLA from Sivakasi.
13: It's a people victory, particularly Tamil Nadu women and youth victory. Definitely our leader and our all ministers will give transparency government. We'll work for the all minority brothers and sisters. We'll work for the development, particularly social justice and secularism. Definitely we will change. We'll start a new history. That is the experience, all the experience in the DMK is the corruptions. We'll give the, you can see the transparency and the development ministry. Thank you.
14: Victory, and everything gonna change. And the change is here. The Talapathy Chief Minister Joseph Vijay is here. And so coming from such a middle class family, getting such an opportunity as a candidate and being and having a cabinet minister, is it easy in any of the state? No. It just purely he sees the skill, he sees the talent, and we are here to make all the changes.
15: This,
14: of course, more than 15 years, 20 years, 35 years, 50 years.
15: Yes.
14: We are going to be a longest.

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना. साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: And after days of relentless back and forth, Talapathy Vijay has finally been sworn in as Tamil Nadu Chief Minister. Speaking at his oath-taking ceremony, Tamil Nadu CM announced three orders within minutes of swearing in. Post the swearing-in ceremony, the Chief Minister went to the Secretariat. He received the Guard of Honour, signed an order, sat on the Chief Minister's chair. Shortly after taking charge as a CM, Vijay also visited the Periyar Memorial, paying tribute to one of the TVK's ideologues. He also held a high-level law and order huddle, taking stock of the situation and meeting the chief secretary. The Tamil Nadu chief minister has hit out at the DMK in his first speech, raking up the issue of economic crisis in the state, saying DMK had emptied the state coffers.
2: மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே சி வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா, இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க. இங்க ஒரே சென்டர் தான், என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்பவே சொல்லிடுறேன், This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now.
0: Meanwhile, Vijay's father gets emotional, says, "My dream and my wish have been fulfilled by my son." Listen.
3: இவரே என்ன வேணுங்க எனக்கு, என்னுடைய ட்ரீம், என்னுடைய கனவு அந்த கனவு அவர் நிறைவேற்றிருக்கிறார். என்னுடைய கனவை என் பிள்ளை நிறைவேற்றிருக்கிறார். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கே அவர் முதல்வராக இருக்கிறார்.
4: ஹாப்பி அன்னையர் தினம். விஜய் வந்து நன்றாக ரொம்ப நல்லா இதை எடுத்து நடத்துவாருன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, பார்க்கலாம்.
5: Extremely happy from bottom of my heart, and we really owe a lot of thanks to all the citizens of Tamil Nadu and everyone from the world, from all over the world.
0: NDTV's Sam Daniel also spoke to actor Trisha after Vijay took oath as Tamil Nadu Chief Minister. Listen in.
6: Is it a blockbuster of pandemic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of pandemic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
6: Is it a blockbuster of pandemic?
5: Very happy. Congratulations. Congratulations.
0: NDTV's managing editor Shivarur, who's reporting from Ground Zero, spoke to TVK.

0: which is coming in at this point. This is the message from the Prime Minister of conserving fuel. This is a message coming in from the Prime Minister amid the West Asia conflict. The Prime Minister said that use petrol and diesel sparingly, use electric vehicles, save fuel, prioritize work from home, virtual meetings. It is our responsibility to save foreign currency spent on fuel. That's an important word coming in from the Prime Minister. He's also said that we must postpone foreign travel by 1 year. Use metro, public transport, wherever possible. Avoid non-essential gold purchase. That's the word coming in from the Prime Minister. And clearly this advice is coming in, keeping in mind that there's a conflict in West Asia between Iran and US. And of course, the regional players have also gotten involved. Not to forget that the Strait of Hormuz, an important bottleneck in global trade, continues to remain blocked by both the sides. That has caused a fuel scarcity across the world. Major players across the world, including US and Europe, are affected. And this is a message coming in from the Prime Minister.
1: Gold, yani sone ki khareed, ek aur pehlu hai. जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है. इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें